रवीश साहब मुझे जितनी भी सिस्टर्स हैं वो मुझे याद दिलाएं ताकि वो उसको भी मैं सलाम पेश करूं। और इसके साथ साथ अगर किसी ने भी कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है, ये नितासुकसे तपूस कोई गुख्तने का वही जमुंग ने से तपूस लड़े नो बिल्कुल जमुंग पर 0335-435-3515 बांधे प्रोग्राम द मैसेज कोलिश द व्हाट्सएप दिलारी। थैंक यू भाई, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपको भी लंबी जिंदगी दे और कामयाबी करे। रवीश राम, थैंक यू सो मच। इलाही आमीन, जजाकअल्लाह खैर, शुक्रिया। और मैं तो सोच रहा था कि शायद मैं मैसेज और कॉल नहीं शामिल कर सकता, तो शायद कोई भी प्रोग्राम नहीं सुन पाएगा ना सुनेगा, क्योंकि उसको कहेगा, वैसे भी सोचेगा कि हसाम को वैसे भी पता नहीं चलता आज हम प्रोग्राम नहीं सुनेंगे। चलो लेकिन आज आप सुन रहे हैं, मुझे इतना अंदाजा हो गया। सो बहुत ज्यादा शुक्रिया जितनी भी बहनें, जितने भी भाई, जितने भी बुजुर्ग बड़े इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, सो सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोगों का।

0: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद।
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ το ουγγέ για πατασαπάρ σε τέσσερα έχω χαστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να πατασαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χαστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με ζει μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βορίβι. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίζε τα σέραγγε σέρα προβρή.
1: Δελκολ τα ρεχανά τα γκυλέ με χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βορτάλ σε ρικρέτη, ο στόλ κούρβαλα να χωσούλτι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब्रो उदार तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दोनों सरफे पर इस बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पर ही पवा लो सीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने বলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানসেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ এর সাহেব স্যার ওদের তে মিলাবিজি।

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم and very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pegham 97.4 Pahadpur, Global FM 91 Dear Asman Khan and Radio Aman 88.4 Dha. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज किसकी है जनाब? ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की, ये आवाज है सेहत और तंदुरुस्ती की, ये आवाज है शिफा की, और ये आवाज है हुस्न और खूबसूरती की।
1: देखा खुदा तो हमने बेपरदा उसी की जात में।
0: जी जनाब, एक नए दिन के साथ, एक नई तारीख के साथ जनाब, केसन नेचुरल पाकिस्तान के स्टूडियो, केसन स्टूडियो से हमारा सलाम कबूल कीजिएगा। मुझे कहते हैं खलील ताबे शामान, और आज दिन है मंगल का। जी जनाब, मंगल का दिन है, और तारीख कौन सी है? जी जनाब, 6 अक्टूबर 2026 और 21 अशो। जी सामने ग्राम, कैसे आप सभी लोग जनाब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल जी ठीक ठाक होंगे, फिटफाट एकदम मजे में, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, चहचहाते हुए जनाब अपने एक खूबसूरत और अहम दिन का जो है इख्तिताम के करीब होंगे। क्योंकि जनाब ये वक्त जो होता है वो हमारे दिन का आखिरी वक्त होता है कि जिसमें हम आपको आके ज्वाइन करते हैं। हर तारीख कोई ना कोई तारीख रखती है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए खुशी का बायस होते हैं, और उन दिनों को हम हमेशा याद रखते हैं। जैसे कि आज 6 अक्टूबर का दिन है, तो जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन में केसन नेचुरल पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स की फैमिली है उसके अंदर जो है कुछ नए प्रोडक्ट्स का इजाफा हुआ है। कुछ नए प्रोडक्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि आप डेफिनेटली जब इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको ढेर सारे फायदे मिलेंगे। क्योंकि आज तक जो भी केसन ने प्रोडक्ट बनाए हैं वो आपकी डिमांड होते हैं, वो आपकी नीड होते हैं, और ये जो नए प्रोडक्ट आज 6 अक्टूबर की तारीख में हम आप लोगों को पेश करने वाले हैं, यकीनन आप लोग जब इनके बारे में जानेंगे, जब आप लोगों को इन प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, तो जाहिरी बात है कि आप झट से पैसे लेकर जनाब इन प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेंगे। क्योंकि जनाब आपको पता है कि केसन पर लगाए जाने वाले पैसे जो

मेहनतें शामिल होती हैं, बहुत सारी रिसर्च शामिल होती है, बहुत सारी तहकीक शामिल होती है और अनथक मेहनत और स्ट्रगल शामिल होती है। तो 6 अक्टूबर हमारे लिए एक तारीखी दिन बन गया है कि जिसमें केसर नेचुरल पाकिस्तान ने एक साथ 3 नई प्रोडक्ट्स आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दे दी हैं और आपको सुपुर्द कर दी हैं, यानी कि हमारी तरफ से मुकम्मल तसल्ली होकर हमने अपने ट्रायल्स करके आप लोगों के लिए ये 3 बड़ी प्रोडक्ट आज से आप लोगों को इस्तेमाल के लिए दस्तियाब कर दी हैं। जी जनाब, कौन सी प्रोडक्ट हैं इनके हवाले से भी बात करेंगे और जरूर बात करेंगे, क्योंकि जनाब हर दिन जो हम आपके साथ आते हैं ढेर सारी डिटेल लेकर आपके सामने पेश होते हैं और वो प्रोडक्ट जो आपकी नीड है। और हमेशा हमारी जो रिसर्च की टीम है वो हमेशा इस तहकीक में जुड़ी रहती है कि हम अपने कस्टमर्स को कौन सी फार्मूला इंट्रोड्यूस कराएं, कौन सी चीज लोगों की डिमांड है या कौन सी चीज ऐसी लोगों को चाहिए है जो लोगों को जरूरत तो है लेकिन लोगों को वो चीज मिल नहीं रही, या अगर मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, या अगर मिल रही है तो बहुत मुश्किल से मिल रही है, या अगर मिल रही है तो गैर मियारी चीज आप लोगों तक पहुंच रही है। तो केसर नेचुरल पाकिस्तान हमेशा आप लोगों के लिए मियारी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती है और केसर की पहचान है जनाब मियार क्वालिटी जो है वो केसर की पहचान है। तो जनाब आज कौन सी 3 नई प्रोडक्ट जो है वो हमने आप लोगों को इस्तेमाल के लिए दे दी हैं, यानी कि आपके इलाकों में तकरीबन ये पहुंच चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं या कल की तारीख में ये तमाम स्टेशन के ऊपर आपको बआसानी दस्तियाब होंगी।

दिया जाता है, उसके साथ में आप एक सीरम भी पड़ा होता है कि भाई क्रीम के अंदर इनको मिक्स कर लें, तो ऐसी क्रीम को फार्मूला क्रीम कहा जाता है कि ये फार्मूला क्रीम है। तो हमने जो आपको ये फार्मूला प्रोवाइड करने जा रहे हैं ये बेसिकली सीरम फार्मूला क्रीम है, ठीक है जनाब। एक तो क्रीम होती है, क्रीम बन गई, उसके बाद फर्दर अगला स्टेप क्या है कि इसको मजीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। वो कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा, ये लफ्ज आपने सुना होगा जितना गुड़ उतना मीठा। तो ये कहानी बेसिकली फार्मूलाज की होती है कि भाई हम आपको जो क्रीम बना के दे रहे हैं वो फार्मूला क्रीम है, और इसके अंदर वैसे तो मार्केट में जो है आजकल जो क्रीमें मिलती हैं उनके अंदर एक सीरम शामिल होता है, व्हाइटनिंग सीरम शामिल किया जाता है या विटामिन सी सीरम शामिल किया जाता है। लेकिन हमने आप लोगों के लिए ये जो स्किन क्लियर फार्मूला बनाया है, एक तो ये एक परफेक्ट प्रोफेशनल जो है फार्मूला है, ठीक है जनाब। कीमत में ये आम क्रीमों से महंगी क्रीम है, ठीक है जनाब। लेकिन क्यों महंगी क्रीम है कि जनाब इसके अंदर कुछ ऐसा है जो इसको कीमती बनाता है, ठीक है जनाब। वो मिसाल याद रखिएगा, जितना गुड़ उतना मीठा, ठीक है जनाब। तो इसके अंदर हमने मीठा कुछ ज्यादा डाला है। ये जो क्रीम है, ये जो स्किन क्लियर फार्मूला है जनाब, इसके अंदर जो मिठाई है ना, जो मीठापन है वो दूसरी क्रीमों से ज्यादा है। यही वजह है कि ये कीमत में भी ज्यादा होगी, लेकिन ये रिजल्ट में भी उतनी ही ज्यादा होगी जितने हम चार पैसे आपसे ज्यादा वसूल करेंगे। सो केसन का ये पहला, हम आप लोगों को सीरम बेस्ड फार्मूला, सीरम इन्फ्यूज्ड क्रीम कहा जाता है, इसके अंदर सीरम्स को जो है इन्फ्यूज किया गया है। इन्फ्यूज्ड कहते हैं किसी, जैसे आप कहते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं यार इसको इन्फ्यूजन लगा दो, इन्फ्यूजन, ठीक है जनाब। इन्फ्यूजन क्या होता है, इंजेक्शन होता है बेसिकली, ठीक है जनाब। और वो इंजेक्ट करते हैं आपको रग के अंदर, और वो फिर जो भी ड्रिप के अंदर होता है वो इन्फ्यूज होकर आपकी स्किन के अंदर चला जाता है। तो ये जो सीरम इन्फ्यूज क्रीम है, इसका नाम है केसन स्किन क्लियर फार्मूला। अब ये आपकी स्किन की क्लैरिटी के कौन कौन से काम करेगी भाई, किस तरह की स्किन को ये क्लियर करेगी, ठीक है जनाब, ये अब जानना जरूरी है। ये हमने आप लोगों को रेट भी बताता हूँ, बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि भाई कोई बहुत महंगी तरीन चीज आ गई है जो केसन ने लॉन्च कर दी है। तो प्राइस के हवाले से भी मैं आज आपको स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी क्या बनी है आप लोगों के हवाले से। स्किन क्लियर फार्मूला जो कि सीरम इन्फ्यूज क्रीम है, आप लोगों के लिए केसन ने इस्तेमाल करने के लिए पेश कर दी है।

0: होई सारा दिन गाना सुनता रहता है। पसंद रसूख होई
1: दादाजी दादा सुन पे जने दाखो अली जफर दे
0: होगा भाई हमने गाना वाला बड़ा देखा हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान में जाएगा।

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: बीमार हैं, आपके आसपास कोई ऐसा पड़ोसी है, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो कि बीमारी से तंग आ चुका है, उसने बहुत ज्यादा इलाज कराए हैं लेकिन फिर भी उसका जो मसला है वो हल नहीं हो रहा है, तो जनाब अब आपके शहर टांग में इस्लामाबाद रावलपिंडी के निहायत काबिल और तजर्बाकार हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अपनी खिदमात दे रहे हैं अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी में कल आप आ सकते हैं। हकीम साहब सुबह 8 से शाम 4 तक मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तो जी यहाँ भी कॉल करके जो है हमें भूल गए हैं कि हमने जो है ना एफएम पर कॉल किया। जनाब इस तरह का जो नंबर होता है जो हमें कॉल करके आवाज नहीं देता, आपको बता दिया जाए कि आपका वो नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि ये सेहत के हवाले से प्रोग्राम है। हर एक कॉल, हर एक मिनट, हर एक मैसेज हमारे लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि आपकी कॉल की वजह से कोई ऐसा पेशेंट होगा जो इंतजार में होगा कीम साहब को कॉल करने में, उनका कोई ऐसा सेहत के हवाले से मसला होगा। सो काइंडली अगर आप कॉल करते हैं तो आवाज जरूर दिया करें, आपका जो सवाल होता है आप जरूर कीम साहब से पूछ सकते हैं 0319-55-23-404 पर, 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी,
1: असल में नेटवर्क
0: का मसला है साहब, और काफी सारे भाई जो है ट्राई कर रहे होते हैं क्या शो लाइव है या रिकॉर्डिंग है,
1: नेटवर्क का मसला आ रहा है,
0: ऐसी बात है। सो हकीम साहब एक कॉलर मेरे पास आ चुके हैं, देखते हैं जी कौन है, कहाँ से है, लेकिन हकीम साहब मसला ये है, नेटवर्क का मसला आप देखें, कॉल पिक ही नहीं हो रही
1: है, ऐसा ही है,
0: तो ये नेटवर्क का मसला है। अच्छा हकीम साहब एक मैसेज आया हुआ है, मैसेज रीड कर लेते हैं, नेटवर्क का ठीक होता है तो फिर कॉल्स भी लेंगे। एक मैसेज मेरे पास आया है कि अस्सलाम वालेकुम मनीष भाई, हकीम साहब को भी मेरी तरफ से सलाम, और कहते हैं कि मुझे मेरे सर में दर्द होता है, इसके जिस्म में थकावट भी महसूस करता हूँ, और कहते हैं कि मैं पेन किलर इस्तेमाल करता हूँ इन चीजों के लिए, अब तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अब तो मुझे अच्छा कहते हैं कि नहीं लगता है कि अब मैं इनका आदी बन गया हूँ, और कहते हैं कि आपसे मशवरा इलाज के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्रोग्राम में बताते रहते हैं कि जो आप पेन किलर डेली लेते हैं ये तो एक नशा है। रजा खान टांग से हमारे साथ हैं जी, हकीम साहब क्या मशवरा देंगे आप ये जो रेगुलर पेन किलर्स लेते हैं
1: इनके लिए? तो यही कहा जा सकता है कि बार बार और आदतन बाजे लोग लेते हैं तो ये शदीद नुकसान दे,
0: ऐसी बात है। हाँ।
1: वक्ती तौर पे तो आप उसको कंट्रोल करते हैं
0: बिल्कुल,
1: लेकिन फिर बाज दफा ऐसा होता है कि वो शिद्दत से मर्ज वापस भी आता
0: है, ऐसी बात है। हाँ,
1: और ज्यादा इस्तेमाल तो वो जाहिर बात है किडनीज और लीवर के लिए वैसे ही नुकसान दे है कि आपके जिगर और आपके गुर्दे दोनों मुतासर होते हैं,
0: ऐसी बात है।
1: तो रजा साहब से तो यही है कि एक तो वो टांग में है और अगर फुर्सत मिले तो मिल सकते हैं आके, और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि पेन किलर इतने ना लें,
0: इनसे परहेज
1: करें, कोशिश करें कि आप देसी कोई दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर बार बार आप लेंगे आप तो आदि बनेंगे इसके,
0: ऐसी बात है।
1: और इसके साथ साथ फिर यह है कि आपके मैदे के मसले भी बढ़ गए,
0: ये
1: हो सकता है आपका मैदा खराब हो चुका हो, तजाबियत बढ़ गई हो, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और दिल जो है हमारा उसकी सेहत भी खतरे में आ जाती है।
0: अच्छा हकीम साहब मैंने तो ये सुना है कि ज्यादातर जो दिल के मरीज हैं उन्होंने यही स्टेरॉइड्स और जो डेली पेन किलर्स ले लेके अपने आप को जो है ना दिल का मरीज भी बना लिया।
1: देखिए वो बात ये होती है कि जब आप कोई उसकी खातर खा तशीस नहीं होगी,
0: ऐसी बात है,
1: उसको कोई समझाएगा नहीं, या बाज का जितना आदमी खुद कह लें कि अपने आप पे तजर्बे करना शुरू करेगा तो फिर उसके लिए मसला बनेगा ही। तो अब जिस तरह ये कह रहे हैं रजा साहब तो इनकी जगह कोई भी और भी हो तो वो यही है कि सर दर्द के लिए बार बार मेडिसिन लेते हैं, गोली खाते हैं, पेनाडोल खा ली, कभी कोई खा
0: ली, बात है हां सही,
1: तो जिस्म उसका आदी हो जाता है,
0: बिल्कुल ऐसी बात है।
1: उस दवा का असर जैसे ही खत्म होगा सर दर्द मजीद जो है वो शिद्दत से
0: ऐसी बात
1: फिर वापस आ सकता है। अब चीज ये है कि आप उस चीज के आदि अपने आप को ना बनाएं,
0: ठीक है,
1: कि आपको बार बार बार बार जो है वो क्या कहते हैं मेडिसिन की जरूरत पड़े, कोशिश करें पहले तो आपके उससे दवाई की आपको जरूरत ना हो,
0: ऐसी बात है
1: सही है, लेकिन अगर पड़ती है तो कोशिश करें फिर आप कोई देसी हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करें,
0: हाँ ये भी,
1: या मुआलिज से मशवरा कर लें,
0: ऐसी बात
1: वो
0: है।
1: आपके लिए कोई ऐसी दवाई तजवीज करे कि जो आपके लिए नुकसानदेह साबित ना हो,
0: बिल्कुल ये भी है।
1: बाकी कई

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये जो पदशा पर सीधे तशा हो खस्ती थी
1: जनाती से तारखे ना पशा पर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जो दस रंगे सरा प्रोब रही
1: बिल्कुल तारखे ना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े थी और स्टोल कुर वाला नफाशोल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरा ब्रो वो दर तो ये या कि पर इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी कि कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर से मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला विजी।